0: भागवई पेली हिरेला योग बापे नवरा ठरिवला योग बापे नवरा ठरिवला
1: ठरिवला नवरा
0: कैसे तुम

0: नो कॅश नो टेन्शन, कारण IMPS आहे ना. विश्वास कोऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड नाशिक. IMPS सेवा, डिजिटल युगातील क्षणातील सुरक्षित सेवा. क्षणात पैसे पाठवा कुठेही कधीही, आले मनात पैसे पाठवले क्षणात. विश्वास बँक, स्मार्ट बँकिंग ची स्मार्ट निवड.
1: क्या हुआ?
2: वो तो
1: क्यूट है ना.
2: अरे पहलवान है,
1: पर तुमसे प्यार करती है.
2: हो नहीं सकता.
1: और तुम्हें भी उससे प्यार करना चाहिए.
2: हो नहीं सकता.
1: वो तुम्हें पकड़ने यही आ रही है.
2: ये हो नहीं सकता.
3: पुनी को तो कुछ भी हो सकता है.

0: मेरे साथ डांस करोगे?
1: नहीं।
0: ए, जरा मेरी आंखों में आंखें डाल के बात करो। अब तुम वही करोगे जो

0: मुझ से और आगोश में नन्हे को लिए
1: Will you shut up?
0: La la la la la la la la la la la la